Mitchie. It's hot.

जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ ना, वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरह कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपने पूरे के पूरे कान और पूरी की पूरी अटेंशन मुझे आपको देनी ही पड़ेगी. सो आई वॉज डेटिंग दिस वन गाय अ कपल ऑफ इयर्स अगो जो बाइसेक्सुअल था, अर्थात वो एक ऐसा इंसान था जो बंदों में भी इंटरेस्टेड था और बंदियों में भी इंटरेस्टेड था. और उसका मुझसे पहले एक पार्टनर था जो भी उसी की तरह था, मतलब बंदियों को भी डेट करता था, बंदों को भी डेट करता था. नाउ आई स्टार्टेड डेटिंग दिस गाय, हमारा रिलेशनशिप कुछ 5-6 महीने चला, एंड देन दैट गाय गॉट डिस्ट्रैक्टेड, द रिलेशनशिप गॉट फिजल्ड आउट. तो अब मुझे एक डेटिंग ऐप पर एक बंदा मिला हु इज सुपर क्यूट, सुपर फन टू टॉक टू, ये वो, और हम ना अपनी जिंदगी की स्टोरीज एक्सचेंज कर रहे हैं. और वो मुझे कहता है कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वही बंदा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड निकला है. एंड दिस इज सो स्पूकी एंड इट्स बॉर्डरलाइन क्रिंज. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब इस बंदे का क्या करूँ, क्या मैं इससे बात करना जारी रखूँ, बिकॉज आई मीन वी बोथ डेटेड द सेम गाय, तो हम तो ऑलरेडी रिश्तेदार हुए. आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस, सो व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू हिट मी अप कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट एंड इट्स अ गॉर्जियस मंडे इवनिंग.

धड़क मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर गाना जो चार्ट्स पे आता है वहां रहने का हक नहीं कमाता. कुछ गाने आते हैं शोर के साथ और कुछ गाने आते हैं सच के साथ. इस हफ्ते दोनों हैं. ये है द मिर्ची टॉप 20 और मैं हूं इसका होस्ट सुरेन सुंदरम. एंड इस हफ्ते का काउंटडाउन कम एक कॉन्वर्सेशन ज्यादा है. प्यार के बारे में, बेवफाई के बारे में, पहली बार के बारे में और उस बार के बारे में जो पहली बार जैसा कभी नहीं होता. कुछ सवाल हैं इस हफ्ते जो मैं खुद से पूछ रहा था और आज आपसे पूछना चाहता हूं. क्या पुराने प्यार वाला गाना अब भी बनाना पॉसिबल है? क्या कोई फ्रेंचाइज दोबारा वो मैजिक छू सकती है जो पहली बार में हुआ था? और क्या बॉलीवुड 2026 में भी वही कहानियां सुना रहा है जो 20 साल पहले सुना रहा था? जवाब इस शो में है. लेट्स स्टार्ट विद गाना नंबर 20.
3: नंबर 20.
2: भूत बंगला का ओ सुंदरी दूसरा हफ्ता एंड ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ गया है. अब कुछ गाने ऐसे ही करते हैं लेकिन जो आगे है वो अलग है. धुरंधर की दुनिया से दो गाने बैक टू बैक. पहले जाइए सजना, ये डेब्यू कर रहा है लेकिन ये गाना आप पहले से जानते हैं, हर एक बोल, हर एक सुर. और फिर इश्क जलाकर रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग, अलग ही आग है.
4: नंबर 19.

0: इश्क चलाकर, याद है आपको? एक डायरेक्टर ने लिटरली ऐसा ही कुछ किया था, 2006 में इश्क को जला दिया था, पूरे देश के इश्क को, विद इस फिल्म कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर, जिन्होंने हमें राहुल और अंजलि दिए, अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करना सिखाया, शैंडलियर वाला प्यार दिया, उसी करण ने एक दिन डिसाइड किया कि वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दो शादीशुदा लोग, गलत इंसान से शादी, और एक दूसरे में सही इंसान को ढूंढते हुए। इंडिया रेडी नहीं था, लेकिन करण ने खुद एक बात कही थी।
1: कितने लोग हैं, कितने ऐसे सारे रिश्ते, कितने ऐसे पीपल हु वेंचर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विदाउट गिविंग इट अ थॉट, रियली विदाउट रियली सिटिंग एंड थिंकिंग इज ही द राइट पर्सन, इज शी द राइट पर्सन। कभी कभी पेरेंटल प्रेशर की वजह से हम शादी कर लेते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कभी सोशल प्रेशर्स होते हैं, कभी प्रेशर औरत का कभी होता है कि आई एम 30-32 एंड आई एम नॉट मैरिड एंड व्हाट्स गोना हैपन एंड दे सकम टू दिस इंस्टीट्यूशन।
0: ये 2006 में बोला था करण ने, लेकिन ये 2026 में भी उतना ही सच लगता है, इनफैक्ट शायद ज्यादा। तो अब कैंक वापस आ रही है वेब सीरीज के रूप में, और ये वही कहानी होगी, लेकिन हम अलग होंगे। ओटीटी ने हमें मॉरली कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखा दी है, हमने सब देख लिया है, सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखना क्या हम इस बार देव और माया के साथ महसूस करेंगे या फिर से उन्हें जज करेंगे। इवॉल्व होना और डिसेंसिटाइज्ड होना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। इस सवाल का जवाब शायद वो वेब सीरीज देगी। तब तक माय पिक ऑफ द वीक वही गाना है जो उस फिल्म की तरह था, अनकंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और बिल्कुल सच। सोनू निगम एट हिज मोस्ट ब्रिलियंट बेस्ट, कभी अलविदा ना कहना, बाय शंकर एहसान लॉय एंड जावेद साहब। पिक ऑफ द वीक।

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 14

तो ये था रूप दी रानी, अ 90s सॉन्ग एक नई पैकेजिंग में फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो, स्टारिंग आयुष्मान खुराना द पति, वामिका गब्बी हु आई एम गेसिंग इज द पत्नी, एंड रकुलप्रीत सिंह एंड सारा अली खान हु आई थिंक आर द वो दो। तो टोटल तीन लेडीज हैं, एक हीरो है, सब साथ में नाच रहे हैं, सब काफी खुश हैं एंड सब कुछ ग्लॉसी है। वाओ, इट्स मी सुरेन। एंड बॉलीवुड का एक पुराना गिफ्ट है हमारे लिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत सिंपल पैकेजिंग में दे देता है, चाहे वो प्यार हो, बेवफाई हो, दो दो अफेयर्स हो, और फिर भी इन सब के बीच में एक आइटम नंबर हमें जरूर मिल जाता है, क्योंकि अगर वेट अच्छी हो तो सवाल कौन करेगा। Well, I spoke about कभी अलविदा ना कहना, right? उसी सब्जेक्ट पे, एक ही थी, गलत रिश्ते, गलत choices, लेकिन वहाँ consequence था, दर्द था, discomfort था, लोग सिनेमा हॉल से उठ के चले गए थे, और यहाँ सब उठ के नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फिल्म को सीरियस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है एंड हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी जब वही कहानी, वही सब्जेक्ट, वही सिचुएशन सिर्फ एक शाइनी रैपर में आ जाती है तो एक सेकंड रुकने का मन करता है, पूछना पड़ता है कि क्या हम सच में इवॉल्व हुए हैं या सिर्फ कंफर्टेबल हो गए हैं। खैर, बॉलीवुड का ये चक्कर खत्म नहीं होगा, दैट आई प्रॉमिस। तो एक और ग्लॉसी लव ट्राइंगल, और इज इट समथिंग टोटली डिफरेंट, रूमर्स तो यही कह रहे हैं, बट ये शायद गाना ज्यादा स्टाइल के साथ है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन, दिस इज कॉकटेल 2 एंड दिस इज अरिजीत विद जब तलक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

गहरा हुआ 5 महीने एंड अब भी टॉप 5 में। और सुनो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमारे कण कण में घुस जाते हैं परमानेंटली। फर्क बस यही होता है दैट द सिंगिंग कॉम्पोजिशन एंड सबसे जरूरी द लिरिक्स तीनों एक साथ एक ही वक्त में बिल्कुल सही जगह पर होते हैं। जैसे एक और गाना विच आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम रॉकस्टार।

मोहित चौहान, एआर रहमान, निशात कामिल, द एंटायर रॉकस्टार एल्बम, तीनों फायरिंग साइमल्टेनियसली। एक भी चीज ज्यादा नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। एक और गाना ले लीजिए।

0: अरिजीत, सचिन जिगर, वायु, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस बिल्कुल सही। और आज भी एक गाना सबके जहन में घूम रहा है।
1: नंबर 4।

9 महीने एंड अब भी टॉप 5 में, इस हफ्ते नंबर 4 पर। ये गाने अडल्टरेटेड नहीं है, दीज आर प्योर सॉन्ग्स, और इसलिए ये रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि दो जायंट्स एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, दोनों अपने जॉनर के सबसे बड़े नाम है, और गाना वो अच्छा होता है, चार्ट्स पर भी होता है, इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर भी बन जाता है बिकॉज इट्स 4 places अप। लेकिन क्या ये गाना 9 महीने बाद टॉप 5 में रहेगा? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ गाने मॉन्यूमेंट्स होते हैं और कुछ गाने बस एक खूबसूरत मोमेंट होते हैं। ये है इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर, अप 4 places, अरिजीत सिंह विद निकिता गांधी, म्यूजिक बाय प्रीतम, एंड लिखा है कुमार भाई ने। तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

0: RARA, and we might be getting more of SP Chaudhary Aslam. It's me, Suren Sundaram, and Sanjay Dutt ek baar phir se hain in the spotlight. Interesting baat ye hai, ye sirf ek comeback nahi lagta, ye ek direction lagta hai. कुछ दिन पहले संजू बाबा ने बल्लू की वापसी अनाउंस कर दी, द सीक्वल टू खलनायक. और तब एक चीज क्लिक कर गई, ये पहली बार नहीं हो रहा है. गदर एक प्रेम कथा, वापस आती है, खूब पैसा कमाती है. बॉर्डर फिर से एक्टिवेट होती है एंड अगेन खूब पैसा कमाती है. तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें देखते वक्त हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं. हम शायद फिल्म नहीं देख रहे, शायद वो फीलिंग देख रहे हैं जो पहले कभी अटैच हो चुकी है इन फिल्मों के साथ. क्योंकि जब आप किसी सीक्वल के लिए थिएटर में जाते हैं, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं जाते, आप अपना वर्जन लेके जाते हैं और फिर फिल्म उसको कंफर्म करती है. इसलिए ये फिल्म्स काम करती हैं, नॉट बिकॉज दे आर शार्पर बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर. और फेमिलियरिटी एफर्ट नहीं मांगती, सिर्फ रिकॉल मांगती है. शायद इसलिए बॉलीवुड आजकल कहानियां कम लिख रहा है और मेमोरी ट्रिगर ज्यादा कर रहा है. एक थॉट छोड़ के जाता हूं, नया बनाना मुश्किल होता है लेकिन जो पहले से काम कर चुका है उसे दोबारा बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिल्म्स या अपनी ही पुरानी यादों का अपग्रेडेड वर्जन? Think about that. क्योंकि अब वक्त है इस हफ्ते के नंबर वन गाने का, डोमिनेटिंग द टॉप स्पॉट फॉर 11th टाइम. दिस इज शरारत फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची.
1: नंबर वन.

0: 11 बार 11 टाइम्स और नंबर वन मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल आई एम डन फॉर दिस एपिसोड, मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट.
1: Only on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
1: Let's go crazy.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है कनिका एंड अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @rjkanika। इस हफ्ते के काउंटडाउन में टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का कोलैबोरेशन, द ग्लोबल पंजाबी कोलैबोरेशन। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। देन उसके बाद अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों इनक्रेडिबल गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: The magic of Coke Studio Bharat is back. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज, रैबिट आवर की प्रोडक्शन अलॉन्ग विद कुटले खान. ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: जितने नए कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं उनको सुन के लगता है कि यार वही पुरानी वाली बात लेकिन एक नया अंदाज. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Gaana number 9 par humne suna ae Ajnabi. Aisa nahi hota life mein kabhi kabhi koi insaan hota hai jisko hum puri tarah paate bhi nahi hai lekin completely lose bhi nahi karte hai. Wo ek beech ka ek space hai jahan koi naam nahi hai, na usse zyada express kar paate, closure भी नहीं मिलता. ए अजनबी एक

अजनबी एग्जैक्टली वही फीलिंग को पकड़ता है. इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, सो कोक स्टूडियो के सारे अंदाज हैं इसमें. एक तरफ कुटले खान, राजस्थान की मिट्टी से निकली हुई आवाज जो सालों से फोक को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ द पॉप सेंसेशन आदित्य रिखारी. इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ कोक स्टूडियो कर सकता है. What I absolutely love about these songs is कि वो किसी भी एक तरह की साउंड को डोमिनेट नहीं करता है. वो हर आर्टिस्ट को अपना स्पेस देता है उस गाने में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ कुटले खान की मिट्टी से जुड़ी हुई फोक अंदाज आपको इस गाने में सुनाई देगी, वहीं आदित्य रिखारी की पॉप बॉय एनर्जी एक साथ आपको इस गाने में मिलेगी. एंड जब ये बैलेंस सही बैठता है ना, द सॉन्ग हिट्स एग्जैक्टली इन अ हार्ट. और ऐसे ही गाने हमको याद रह जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक अवे फैक्टर रह जाता है ऐसे गानों में. पिछले हफ्ते हमने आपको एक धुन सुनाई थी एंड आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है. एक बार फिर से सुनिए. Lots and lots of right answers. It is Duba Duba by Silk Route. Mohit Chauhan की आवाज है. Intro इतना iconic है कि जैसे आपने music सुना, आपने अब भी गाड़ी में चलते हुए पूरे गाने के बारे में बात कर ली. तो हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. मैं आपको एक और गाना सुनाने वाली हूँ. It's a Coke Studio song. पिछले सीजन का है. एक नया इंडी पॉप सितारा है इस गाने में. इस म्यूजिक को सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन से कोक स्टूडियो गाने का म्यूजिक है. एक छोटा सा हिंट देती हूँ, पिछले ही सीजन का है और इस गाने के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत मकान गिराए हैं, हुस्न के ऊपर प्यार करना सिखाया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी. एट आरजे कनिंग पर जल्दी आके बताओ. बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर फॉर अ रीजन पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची
1: इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10
0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7 7 7

0: हाँ जी हाँ जी, गुरु रंधावा बड़े इंटरेस्टिंग वेज में आके वही सेम बात बोल जाते हो आप गाने में। गुरु रंधावा की आवाज पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके, गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कुछ गाने में फुल शोश आप पंक्ति में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी पूरी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो मेल रोमांस में उस सॉफ्ट एरा को मिस करती है, एंड उस सॉफ्ट एरा के पोस्टर बॉय थे आयुष्मान खुराना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस शो के जरिए हमने इतने सारे पॉप सॉन्ग्स को चार्ट होते देखा है, लेकिन एक तरह के गाने जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव सॉन्ग्स। नाउ एक तरफ ऐसे गाने हैं जहाँ पे हीरो छाती फाड़ के चांद तारे तोड़कर लाके प्यार करने की बातें करता है फुल इम्प्रेस मोड में, वहीं दूसरी तरफ देव बीन सॉन्ग्स जहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव बहुत सॉफ्ट है, बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। और उस फेज का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज थे आयुष्मान खुराना बैक इन द 2010 एरा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी फीड भरी हुई है अबाउट बॉयज सेइंग दैट ब्रिंग बैक द ओजी आयुष्मान खुराना सॉफ्ट बॉय एरा। ये सॉफ्ट बॉय क्या था? ये सॉफ्ट बॉय वो था जो ऐसे वाले गाने गाता था।

0: दिस सॉन्ग वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन. ये आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विक्की डोनर से था, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने ही गाया था. एंड उसके बाद ही वॉज ऑन अ बेल्ट giving us pop songs after pop songs like
1: ambara barasya pani mitti di khushbu mitti di khushbu.
0: उनकी आवाज में, उनके गानों में एक ऑनेस्टी थी, एक वल्नरेबिलिटी थी जिसको लोग सॉफ्ट एरा बोल रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेशन है, एक ऐसा टोन था जहाँ लड़का लाउड नहीं हो रहा है, छाती नहीं फाड़ रहा है, बस अपना प्यार इजहार कर रहा है. ओवर द टॉप मैस्कुलिनिटी नहीं है, कोई फालतू की परफॉर्मेंस नहीं है. एंड आज 2026 में ज्यादा से ज्यादा सिंगर सॉन्ग राइटर्स उसी ऑनेस्टी को एक्सप्लोर करते हैं. बट आई गेट इट, इंटरनेट हैज बीन आस्किंग फॉर आयुष्मान खुराना. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आयुष्मान खुराना के पीक सॉफ्ट एरा से मेरा सबसे फेवरेट गाना, गाने का नाम है यही हूँ मैं. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: मैं खोया तो ढूंढ ना आयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो.

आयुष्मान खुराना की आवाज में दैट वाज यही हूँ मैं, ब्रिंगिंग बैक द सॉफ्ट एरा जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद ये उस फीलिंग को वापस चाहते हैं जहाँ गाना थोड़ा कम परफेक्ट होता है, थोड़ा ज्यादा रियल होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग। एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली इंडी पॉप क्विज को आंसर करो। आयुष्मान खुराना के इस गाने यही हूँ मैं कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके साथ है, जल्दी जल्दी आके मुझे बताओ। बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। संजू राठौड़ का नया नवेला गाना बैंगल्स डेब्यू कर रहा है दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद मिट्टा रॉर का गाना शीशा पिछले हफ्ते से 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: दोसांझ की आवाज इन ट्रेडमार्क दिलजीत दोसांझ स्टाइल का गाना. गाने का नाम है डीलर. छह हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10. इस बंदी का नाम है आरजे कनिका. इंस्टाग्राम पर जाओ अभी, फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. कोई गाने सजेस्ट करनी है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. आपको वो दोस्त हमेशा याद रहेगा जिसने कोई ऐसा गाना सुना दिया जो आपको अच्छा लगता है आज तक भी. मैं आपकी वही दोस्त बनना चाहती हूँ. इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. ये गाने आपको पता है, आपको याद है, बस आपने अभी रिसेंटली सुने नहीं. लास्ट वीक द सॉन्ग वी फीचर्ड वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है चन्नावे बाय कुणाल गांजावाला. अर्ली 2000s का वो फेज जब इंडी पॉप एंड नॉन फिल्म म्यूजिक अपनी पीक पर था. ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था. कुणाल गांजावाला की आवाज में जो उस टाइम ऑलरेडी भीगे होठ तेरे जैसे गानों की वजह से लोगों के रेडार पर आ चुकी थी. लेकिन इस गाने का मैजिक ना कुणाल गांजावाला की आवाज में है, ना इसके म्यूजिक में है. आई ट्रूली फील दैट जो डुअलिटी है ना इस गाने की, द कंट्रास्ट इन इट्स आइडेंटिटी. अब सरफेस पे ये गाना पॉपी पेपी, एकदम हाई एनर्जी, फुल बीट्स, ऐसे कि आप ग्रूव करे बिना रह ही नहीं सकते. लेकिन अगर आप रुक के इस गाने के लिरिक्स पे ध्यान देंगे तो सॉन्ग इज एक्चुअली अबाउट लॉन्गिंग. चन्नावे घर आ जा, मतलब वापस आ जाओ. किसी का वेट करने वाली बात है, जब किसी के बिना दिल खाली लगे, वैसी वाली बात है इस गाने में. इन शॉर्ट वो मीम याद है आपको, हाउ द सॉन्ग साउंड्स लाइक, बंदा डांस कर रहा होता है, एंड व्हाट द सॉन्ग एक्चुअली मींस, बंदा रो रहा होता है. बट दिस सॉन्ग वॉज सच अ रेजर. कॉलेज फेस्टिवल्स, रियलिटी शोज, हर जगह ये गाना परफॉर्म होता था एंड आज हम सबकी कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट बन चुका है. आज भी कहीं सैटरडे डीजे नाइट में जाओगे, चन्नावे गाना बज जाएगा एंड आई एम श्योर द रिएक्शन विल बी इनसेन. सबने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कुणाल गांजावाला की आवाज में द ओजी चन्नावे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है। वंदी का नाम है आरजे कनिका, इंस्टाग्राम पर @RJ कनिका। अपना रिपोर्ट कार्ड हमें कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन गानों के रिपोर्ट कार्ड को सुनने में सबको मजा आता है। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का ग्लोबल कोलैबोरेशन रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। Then Aditya Rekhari, Kutle Khan ka Ae Ajnabi from Coke Studio Bharat on Gana number 9. Uske baad Karan Aujla, Ikki ka For a Reason this week on Gana number 8. Kina pade tu meri baan, kina sona len. Phir Gana number 7 par tha Guru Randhawa ka Vogue. संजू राठौड़ का बैंगल्स ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 6, फिर मिट्टा रौर का शीशा ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ की आवाज में डीलर ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की बैक अगेन एज योर बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। Now it's time for the top 2 songs of the week. Anoop Jain ki awaaz, unki composition, gaane ka naam hai Arz Kiya Hai, a Coke Studio song. 14 hafton se is countdown par barqarar, Arz Kiya Hai is this week on Gaana number 2 and the numero uno song of the week. It makes me feel so proud, man. Pichle hafte se 2 position upar jump mara is gaane ne. Gaane ka naam hai Bairan, a Haryanvi song by this collective act called Banjare. Unhi ke lyrics, unhi ki composition, unhi ki awaaz. Bairan is this week on Gaana number 1. Ye 2 incredible gaane Arz Kiya Hai by Anoop Jain, Bairan by Banjare on Gaana number 1, back to back only on Gaana Indie Top 10. Vandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
2: Number 2.

Mirchi. It's hot.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए।

फिश सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा, बोल तलवार से दिल का शिकार कर, हनी ज़्यादा प्यार।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: 98.3 Mirchi. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

को आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

अगर ना मंडे कोई इंसान होता तो मैं उसको ब्लॉक करके आज का दिन स्टार्ट करती। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मर्ची मॉर्निंग। और अभी स्नूज मत मारो यार, क्योंकि चाय भी गर्म है, ब्रेकफास्ट गर्म है और मेरी बातें भी गर्मा गर्म है, आने वाले गाने भी गर्मा गर्म है और तुम्हारा मूड भी गर्म रहना चाहिए। इट्स मे द 5th सिंको डे मायो वाइब्स हो या फिर 5 मोर मिनट सिंड्रोम हो, आज का मूड काफी सिंपल है, सर्वाइव द वीक डे एंड थ्राइव लाइक इट्स फ्राइडे। वैसे अभी अगर तुम सबवे में हो या कार में स्टक हो ट्रैफिक के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जस्ट रिमेम्बर तुम ऑफिस जा रहे हो, एग्जाइल पर नहीं। आज का मिनी मोटिवेशन है, लाइफ में वाईफाई वीक हो सकता है लेकिन हमारा वाइब एकदम मिर्चीदार होना चाहिए। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मिर्ची मॉर्निंग्स हैज जस्ट बिगन। सो वेदर यू मिसिंग योर घर का नाश्ता या मम्मी की गोदी या फिर सीक्रेटली जजिंग योर अमेरिकन कोवर्कर्स लंच चॉइसेस, मैं तुम्हारे साथ में हूं अगले कुछ घंटों के लिए, तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑफ कोर्स जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। लेट मी नो आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: की गल करनी है
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: गुड मॉर्निंग माय देसी स्क्वाड, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये मिर्ची मॉर्निंग्स है जहाँ पर हम पास्ट को रिवाइंड करके फुल फिल्मी स्टाइल में बताते हैं। तो आज के दिन यानी कि 5th of May को स्क्रॉल करते हैं टाइमलाइन पे। 1260 में कुबलाई खान बिकेम द रूलर ऑफ मंगोल एम्पायर। 1494 में क्रिस्टोफर कोलम्बस लैंडेड इन जमैका। 1789 में फ्रांस का एस्टेट्स जनरल फाइनली मेट आफ्टर 175 ईयर्स।

में SAS ने इरानियन एम्बेसी सीज खत्म किया। और आज के दिन सिर्फ ये सब नहीं हुआ था, इट्स सिंको डे मायो, मेक्सिको एंड US में इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ के तौर पर मनाया जाता है, हु आर सुपर हीरोज विदाउट केप्स। और जापान में आज के दिन मनाया जाता है बच्चों का दिन, यानी कि चिल्ड्रंस डे। फिलहाल फॉलो करो मुझे यानी कि प्रिसिला को, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरा नाम है प्रिसला और आज की पॉपकॉर्न न्यूज जो है वो काफी ट्विस्टेड है टीवी दुनिया से जो है। तो हमारी टीवी की दुनिया में एक शो है जिसका नाम है नागिन। हाँ जी, ये वही शो है जिसमें स्क्रिप्ट में लॉजिक ऑप्शनल होता है। इस शो में हो गया एक एपिक VFX फेल। सीन में हमारी लीडिंग लेडी प्रियंका चाहर चौधरी फुल ड्रामेटिक मोड में है, लेकिन बैकग्राउंड इट इज प्योर ब्लू स्क्रीन। और इतना ही नहीं, सेफ्टी हार्नेसेस भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब बिहाइंड द सीन लिटरली ऑन द सीन हो गया। और इसी तरह से ये शॉट ये सीन एपिसोड में चला गया। इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं नो वे दिस इज रियल, और एक बंदे ने तो सीधे सीधे बोल दिया यार इस बार प्रोड्यूसर्स ने पूरा शो ही अंडू कर दिया है। एंड सच बताओ, ये वो मोमेंट है जब एडिटर ने भी कहा होगा बस यार अपलोड कर दो यार, ऑडियंस को भी तो पता चले रियलिटी चेक क्या होता है। पर वैसे एक बात तो क्लियर होगी, चाहे VFX हो या फिर FX गॉन रॉन्ग हो, देसी ऑडियंस का एंटरटेनमेंट कभी कम नहीं होता है। और इसी एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाते हुए मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हूँ। मुझे बताओ, देखा था क्या तुमने ये सीन? मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. अब वेदर फोरकास्ट का टाइम आ चुका है. अभी फिलहाल टेम्परेचर है 56 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन फील हो रहा है 52 डिग्री फारेनहाइट के आसपास. अभी सुबह 9 बजे तक सनी सीन्स रहने वाला है, मतलब एकदम निकल पड़ी हो जैसे वेदर की. लेकिन बाय द टाइम इट्स 3 o'clock, उसके आसपास हवा फिर से एंट्री मारने वाली है, विंडी कंडीशंस होने वाली है, हेयर स्टाइल का भरोसा नहीं रहेगा, तो अपने बाल टाइटली बांध कर जाना. आज का ओवरऑल टेम्परेचर रेंज इज 56 डिग्रीज टू 82 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि सुबह थोड़ा सा चाय और हुडी वाला माहौल रहेगा, आफ्टरनून आते आते आइस्ड कॉफी एंड एसी वाला माहौल हो जाएगा. और बेस्ट पार्ट ये है कि रेन का कोई सीन नहीं है. लास्ट 24 आवर्स में भी 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन था और अगले 24 आवर्स में भी 0 मिलीमीटर्स, यानी कि अम्ब्रेला को छुट्टी दी जा सकती है. कल से कंपेयर करें तो आज का दिन थोड़ा सा ज्यादा गर्म है. यस्टरडे मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 73 डिग्रीज फारेनहाइट और आज जो है वो जाने वाला है 82 डिग्रीज फारेनहाइट तक. मतलब मौसम कह रहा है अब अपग्रेड मैं ही करने वाला हूँ. तो आज के दिन तुम्हारे आउटफिट गेम को लेयर का प्लेयर बनना जरूरी है. एंड तुम्हारी बेस्टी प्रिसला कह रही है कि आज के दिन भी हाइड्रेटेड रहना जरूरी है और बाहर निकलते टाइम अपना SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना. और फिलहाल मिर्ची लगाए रखो. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो यार. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

right, welcome to the second hour of Mirchi Mornings. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ and I've got with me Mirchi Hour का 3. यहाँ पर तुम्हें मिलती है top 3 updates from around the world. सबसे पहले पटियाला की सुखवीर कौर aka सुखी बाल 43 years old and fabulous has become the first Punjabi woman to summit Mount Amadablam in Nepal. जिसकी हाइट है 6,812 meters. और प्लॉट ट्विस्ट ये है, she's also a prison officer in Sydney and an actress. मतलब इनका लिंक्डइन फिलहाल कंफ्यूज हो रहा होगा. नंबर 2 पर तमिलनाडु के सोशल एक्टिविस्ट अरुणाचलम मुरुगनाथम, जिन्होंने इंस्पायर किया था मूवी पैडमैन को, उनको नॉमिनेट किया गया है 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए और वो खुद कह रहे हैं आई कुडंट बिलीव इट. एंड नंबर 3 पर एक यूएस वुमन का इंडियन बाजार एक्सपीरियंस वायरल हो गया है. शी कॉल्ड इट क्योटिक कलरफुल एंड फुल ऑन बार्गेनिंग वाइब्स. शी कंपेयर्ड इट टू यूएस के फिक्स्ड प्राइस स्टोर्स. और ऑनेस्टली हम सब जानते हैं कि भैया थोड़ा सा कम करो ना यार, इट्स नॉट जस्ट अ लाइन, इट्स एन इमोशन. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला मिर्ची मॉर्निंग्स पर. फिलहाल बने रहो, मेरा हैंडल मिर्ची प्रिस इंस्टाग्राम और एक्स पर जाकर फॉलो करो एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मॉर्निंग माय देसी फैशनिस्टास, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आज की पॉप कल्चर रिपोर्ट सीधे मेट गैला 2026 से आ रहा है.
1: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट.
0: सबसे पहले द क्वीन बी इज बैक. बियॉन्से लास्ट सीन इन 2016 रिटर्न्ड इन अ स्केलेटन इंस्पायर्ड गाउन. और ट्विस्ट ये है, उनकी 14 ईयर ओल्ड डॉटर ब्लू आईवी कार्टर आल्सो वॉक्ड इन ब्रेकिंग द 18 प्लस ओनली रूल. देसी रॉयल्टी भी पीछे नहीं है. जयपुर की प्रिंसेस गौरवी कुमार मेड हर डेब्यू वेयरिंग एन आउटफिट मेड फ्रॉम हर नानी महारानी गायत्री देवी साड़ी. एंड वी हैव आल्सो गॉट अनन्या बिरला सर्विंग फ्यूचरिस्टिक वाइब्स इन ब्लैक स्कल्प्टेड गाउन विथ मेटालिक मास्क बाय सुबोध गुप्ता. और फिलहाल इंटरनेट का फेवरेट पास टाइम इज जजिंग दीज आउटफिट्स. मॉडल भविता मंडावा वोर जीन्स एंड अ शेयर टॉप. सम लव्ड इट एंड सम सेड ये मेट गैला है या स्टारबक्स रन है. Now the big Bollywood entry was Karan Johar in Manish Malhotra inspired by Raja Ravi Verma. Art history meets high fashion. As per the theme of Met Gala 2026 and saath mein Isha Ambani gold thread sari with diamond pehenkar wahan par pahunchi. And by the way, tickets are around $75,000. Bhai itne mein to desi shaadiyon ka full buffet bhi aa jata hai. And if you want to check out the pictures, go and check out my stories on Mirchi Pris on Instagram and X. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आई एम योर हाइप स्क्वाड फॉर टुडे बिकॉज आज हैप्पी वाला बर्थडे मनाने के लिए बर्थडे बेबीज रेडी हो जाए. मे द 5th को अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. शेयरिंग अ बर्थडे विद यू आर द फॉलोइंग सेलिब्रिटीज. सबसे पहले अडेल एंड देन वी गॉट हेनरी कैविल एंड देन वी हैव फिलोसोफर लेजेंड कार्ल मार्क्स. और लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है. वी गॉट माइकल पैलन एंड रिचर्ड ई ग्रांट. तो अगर तुम सोच रहे हो कि आज ऑफिस जाना पड़ेगा या मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी तो रिलैक्स, तुम इंटरनली तो सेलिब्रिटी हो ही यार. आज के दिन खूब सारा केक खाओ, कैलोरीज की परवाह मत करो एंड मिर्ची को अपने साथ चिपकाए रखो. साथ साथ में मैं बोलो तो प्रिसिला भी तुम्हारे रहने वाली हूँ. इंस्टा और एक्स पर भी तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Hey guys, मैं हूँ प्रिस्सला तुम्हारे साथ में. This is Mirji Morning and let's check out the gold and silver का rate update.
1: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,550, $4,550 per ounce के साथ आज सुबह gold के price trade कर रहे हैं. जब हम Mother's Day celebration के लिए तैयार हैं, Raj Jewels की team के साथ 22 carat gold jewelry, 18 carat colorless diamond jewelry, GI certified natural diamond या वो खूबसूरत सा I love you mom. PAM certified silver coin anywhere to be shipped within United States. Visit rajjewels.com जहाँ पे आप आज का gold price lock करने के लिए 0% interest, 0 down payment के साथ 22 carat gold jewelry में invest कर सकते हैं और 12 किस्तों में पैसे दे सकते हैं. और हाँ, make sure you log into rajjewels.com to find out about Mother's Day offers at Raj Jewels. Thank you. Happy morning to all.
0: And there you have it. Gold and silver का rate update. जल्दी जल्दी plan कर लो अपनी jewelry shopping या investment. और फिलहाल मुझे follow करो. Mirji Pris is my handle name on Instagram and WhatsApp पर मेरा number 9033647244. Stay tuned and stay hot.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिस्सला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब मिर्ची आवर का 3 का टाइम है। सबसे पहले दिल्ली में एक इवेंट पर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबिन का मोमेंट वायरल हो गया है। नबिन जी ने गार्लैंड पहनाया और पीएम जी ने उस गार्लैंड को डबल रिटर्न गिफ्ट बना दिया। फिर एक मोदी जी का क्लासिक बैकपैक भी मिला है उनको। ये सब हुआ जब पार्टी ने असम में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिपीट किया और बंगाल में भी बड़ा स्कोर क्रॉस किया है। एंड नंबर 2 पर अमित शाह का एक 12 ईयर्स ओल्ड पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने कोलकाता रैली में कहा था कि दीदी पूछ रही थी मैं कौन हूँ। द वीडियो हैज रिसर्फेस्ड आफ्टर बीजेपी एंडेड ममता बनर्जीज 15 ईयर रेन इन वेस्ट बंगाल। एंड नंबर 3 पर एक कॉर्पोरेट स्टोरी में काफी ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। एंड जेपी मॉर्गन की कॉर्पोरेट स्टोरी जिसमें चिरायु राणा, हु इज एन एक्स जेपी मॉर्गन सीनियर वीपी, जिन्होंने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीरियस एलिगेशंस रेस किए हैं, और अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने लीव लेने के लिए पर्सनल सिचुएशन को गलत तरह से प्रेजेंट किया है। अभी ये मैटर रिपोर्ट्स और लीगल प्रोसेसेस में है, सो फैक्ट्स क्लियर होने का वेट जरूरी है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूं प्रिस्सला, तुम्हारे साथ में इंस्टा और एक्स पर मेरा नाम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है वेलकम करने की हमारी राशियों को।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी मेष राशि, आज तुम रिबेल मोड में हो। अगर कुछ गलत लग रहा है तो बोलो, इवन इफ लोग थोड़ा साइड आई दें तुम्हें। लकी कलर इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ऑपोजिशन मिलेगा लेकिन तुम स्टबन किंग हो। बस ये याद रखो, हर बैटल वर्थ नहीं होता लड़ने के लिए। लकी कलर इज ऑलिव, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, कोई काम अवॉइड करेगा तो तुम बोलो बॉस या तो कमिट करो या फिर क्विट करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, फाइनेंशियल वाइब्स थोड़े से ट्रिकी हैं। रिस्क लेने से पहले डबल चेक बल्कि ट्रिपल चेक करना, वरना वॉलेट कहेगा यार मुझे क्यों तोड़ा। लकी कलर इज ऑफ व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, कोई तुम्हें चैलेंज करेगा पर तुम तो बॉर्न परफॉर्मर हो, स्पॉटलाइट तुम्हारा है। लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, पास्ट मिस्टेक्स को अनइंस्टॉल करो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को सब्सक्राइब करो, अपडेट रेडी रखो। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 4। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन 1। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। इन अ व्हाइल आई विल ब्रिंग अप राशि जोन नंबर 2। मीनवाइल यू गो एंड फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज राशि जोन नंबर 2।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, आज कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रहो। तुम समझदार हो लेकिन सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो। लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सब कुछ कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, कभी कभी लेट इट बी, ये भी एक पावर मूव होता है। लकी कलर फॉर यू इज रेड। लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, कुछ आज इरिटेट करेगा लेकिन तुम चिल मोड में रहना, हर फाइट फाइट नहीं होती है, राइज अबव इट बॉस। लकी कलर इज कॉइज। लकी नंबर इज 2। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, रूटीन सेफ लग रहा है, स्टिक टू इट, हर नया आइडिया गोल्ड नहीं होता है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक। लकी नंबर इज 1। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एडवाइस ओवरलोड मिलने वाला है आज लेकिन तुम सब फॉलो नहीं कर सकते हो, तुम्हारा अपना GPS जो कह रहा है उसे फॉलो करो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू। लकी नंबर इज 1। पाइसीज यानी मीन राशि, सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो सकती है लेकिन जजमेंट जो है उसे होल्ड पर रखो, फिलहाल कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है आज के दिन। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक। लकी नंबर इज 2। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन नंबर 2। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, कनेक्ट विद मी। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टा एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो तुम। अब यहां से गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है, बट जाते जाते तुम्हें कुछ बताकर जाती हूं। साउथ अफ्रीका के खमाटी रिवर में एक इंटेंस इंसिडेंट सामने आया है। सर्च ऑपरेशंस के दौरान एक क्रोकोडाइल को एयरलिफ्ट किया गया था और उसके अंदर ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं। अथॉरिटीज को सस्पिशन था कि ये केस एक 59 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन के डिसअपीयरेंस से लिंक्ड हो सकता है, जो रिपोर्टेडली फ्लडेड ब्रिज क्रॉस करते वक्त बह गए थे। एंड डीएनए टेस्ट फिलहाल चल रहे हैं और कंफर्म हो जाएगी आइडेंटिटी कुछ टाइम में। हैवी स्टोरी है आई नो, और इसी के लिए एक जेंटल रिमाइंडर कि नेचर के सामने हम सब थोड़े से साइड कैरेक्टर्स ही हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए। हमेशा हमेशा ओवर एस्टिमेट करो नेचर को, बट स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। एंड ऑन दैट थॉट, लेट्स पार्ट वेज फॉर टुडे। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी। फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। सी यू टुमारो, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस किसको आता है, कोई योगराज को मैं ही सिखाता हूं। वो घर पे आता

0: 90s के जमाने में मैंने एक बात नोटिस की है कि बात बात पर इज्जत चली जाया करती थी यार।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And 90s के बॉलीवुड एरा में इज्जत used to be a thing. अगर लड़की फिल्म में पूरी रात घर से बाहर रहे तो इज्जत चली जाती थी, अगर लड़की दुपट्टा ना पहने तो इज्जत चली जाती थी, और फिर जब विलन कर्म कांड करता था तो भी इज्जत लड़की की ही जाती थी। जिस स्पीड से 90s में लड़की की इज्जत जाती थी ना, इतनी स्पीड से तो आज मेरे वॉलेट से कैश भी नहीं जाता है यार। 90s में इज्जत चली जाती थी, एंड कट टू आज का टाइम है कि दोस्तों का हमारी इज्जत ही नहीं करनी आती है। उफ, ये दुख खत्म का ही नहीं होता यार। एनीवेज, दुख को भले ही खत्म ना कर पाए लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। तो चलो फिर मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शाहरुख खान को बादशाह का टाइटल कहां से मिला? Of course, from the film बादशाह.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, सिर्फ शाहरुख खान को ही बादशाह का टाइटल नहीं मिला, बादशाह को भी बादशाह का टाइटल वहीं से ही मिला है. Basically, the rapper बादशाह, जिनका असली नाम is आदित्य प्रतीक सिंह, he was inspired.

द टाइटल ऑफ दिस फिल्म सो मच कि उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत ही बादशाह नाम से करी। लेकिन क्या आपको पता है कि बादशाह फिल्म, जिसे कि मैं तो बहुत पसंद करती हूँ यार, इसके काफी सारे सीन्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली वो वाला सीन जब ये अपने ऑफिस को घर बना देते हैं, घर को ऑफिस बना देते हैं, फ्रिज के अंदर कपड़े रखे होते हैं और अलमारी के अंदर खुफिया दरवाजा होता है, वाह ये सारी चीजें मुझे पसंद आती है। लेकिन लेकिन लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल नहीं है, दे आर बेसिकली कॉपीड फ्रॉम हॉलीवुड फिल्म्स। जैसे कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसमें काफी सारे सीन्स जैकी चैन की रश आर और जॉनी डेप की निक ऑफ टाइम से इंस्पायर्ड है। और एक सीन नहीं था जहां पर CBI वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन देता है और उसके बाद फिर हैंड ओवर कर देता है उन वेपन्स को, वेल दैट सीन इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम जॉनी इंग्लिश। बट क्लियरली उस टाइम पर मैं ये सारी मूवीज नहीं देखा करती थी और मुझे इन मूवीज के बारे में पता ही नहीं था, तो मैं तो यार बादशाह देखकर ही मस्त थी। देसी लोग यार, हम तो हॉलीवुड को भी बॉलीवुड की नजरों से ही देखते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह मूवी की शूटिंग के दौरान देयर वाज दिस वन डे जब यूजुअली खुश रहने वाले जॉनी लीवर बहुत ही उदास नजर आ रहे थे सेट पर.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड अब्बास मस्तान, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जो जॉनी लीवर यूजुअली बहुत ही खुश रहा करते हैं, वो ओपनिंग सीन के शूट में काफी सैड नजर आ रहे थे. और जब पैकअप हुआ और उसके बाद जब दोनों डायरेक्टर्स ने जॉनी लीवर के साथ बैठ के बात करी और उनसे निकलवाया कि यार हुआ क्या है, इतने सीरियस क्यों लग रहे थे तुम पूरे दिन, तो पता लगा कि जॉनी लीवर के फादर का एक मेजर ऑपरेशन होना था उस दिन और इसी वजह से वो पूरे दिन नर्वस नजर आ रहे थे. उसी बात पर अब्बास मस्तान ने कहा कि यार तुमने हमें बताया होता तो हमने तो आज शूट ही कैंसिल कर दिया होता. और जॉनी लीवर ने कहा, तभी तो नहीं बताया सर, क्योंकि आप शूट कैंसिल कर देते और ये मैं चाहता नहीं था, अदरवाइज फिल्म का स्केड्यूल इफेक्ट होता. मान गए उस्ताद. अब्बास मस्तान की अपनाइयत और इंसानियत तो थी ही थी और साथ ही साथ जॉनी लीवर का प्रोफेशनल एटीट्यूड धमाल एंड कमाल. You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.
2: Yeah.

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: खूब जमता था रंग जब संडे मॉर्निंग को मिल जाते थे इतने सारे यार, बलूद पापा बेयर, मैडम महालिंगम, लुई, डॉन करनाज, शेर खान, मॉली और किट। याद है
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: संडे की सुबह जिस वक्त टेल्स पे ना आता, हमारे खानदान का हर बच्चा स्टैच्यू बन जाता और वो भी टीवी के सामने। स्ट्रीट स्मार्ट किट और बल्लू की जोड़ी कभी चेजिंग या कभी बीइंग चेज्ड बाय तूफानी लुटेरा डॉन करनाज। यू नो डॉन करनाज की आवाज हिंदी में किसने डब करी थी? जावेद जाफरी ने। एंड बड़ा एक कमाल डब किया था यार उन्होंने, आज तक मुझे डॉन करनाज याद है। एंड यू नो ये कार्टून को बनाने वाले जिम मैगन, हु वाज आल्सो द को क्रिएटर ऑफ डकटेल्स, वो लॉन्च पैड में कॉक को लेकर डकटेल्स का स्पिन ऑफ बनाना चाह रहे थे, बट इवेंचुअली देन जंगल बुक के कैरेक्टर्स बलू और शेर खान को लेकर उन्हें कपड़े पहनाकर टेल्स पिन की शुरुआत हो गई। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आपको पता है इस शो से मैंने क्या सीखा है? बिकॉज ऑफ मॉली, मैडम महालिंगम की क्यूट सी छोटी सी बेटी, आई गॉट टू नो कि डिलिशियस का सही प्रोनंसिएशन क्या है। इट इज डिशियस। यार टेल्सपिन की बातें करते करते ना एक क्रेविंग सी हो गई यार टू वॉच टेल्सपिन, एंड आई चेक्ड इट ऑनलाइन बाय द वे। अगर आपको भी देखना हो ना तो इट इज अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। यू आर मोस्ट वेलकम। और मेरे पास है वक्त बहुत कम और बातें बहुत ज्यादा, तो आगे बढ़े। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, अब इधर उधर कान भी लगा लेते हैं।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अब बारी हो चुकी है मान ना मान करो गानों की पहचान। तो कान लगा के इस म्यूजिक के पीस को सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने इस एक म्यूजिक के पीस में दो म्यूजिक के पीसेस जो है उनको छिपा कर रखा हुआ है। तो दो धुने जो आपको सुनाई देंगी, आपको उन दोनों धुनों के गाने जो है वो गेस करने और मुझे डीएम करना ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। तो 1 2 3 रेडी, हियर वी गो।

फटाक से बताओ ये दो धुने कौन सी फिल्म की है। मिर्ची सारा इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, डीएम करो अपना नाम, अपनी सिटी एंड ऑफ कोर्स दोनों गानों के नाम। इसी के साथ मैं करती हूँ अपना काम, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आशिकियां कर रहे तो 90s की आशिकी फिल्म जैसी करो यारो।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। आशिकी मूवी का ये गाना तो सबको याद है।

वेल, नदीम श्रवण का कंपोज किया गया ये गाना, जिसे गाया अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने है, इस गाने की धुन उठाई गई है फ्रॉम अ पाकिस्तानी सॉन्ग। जो कि पाकिस्तानी म्यूजिक कंपोजर सईद गिलानी की है, और शायद इस गाने की धुन कॉपी होने का इनको भी कोई गिला नहीं, तभी तो मीडिया में किसी ने कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन नॉट टू वरी, मैं हूँ ना 90s और अर्ली 2000s की कॉपीड मूवीज और गानों की इन्फॉर्मेशन आपके पेशे खिदमत करने के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो फॉरन DM करो माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरदर्शन पर रात 12 बजे के बाद क्या आता था इन द लेट 90s, तो क्या जवाब दोगे?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: अगर आपका साबुन फास्ट है तो आप समझ गए होंगे कि जो आता था दैट वॉज अ डीजे नाइट पार्टी का म्यूजिक। एंड यू नो व्हाट, मैं कभी कभी ना इस कलरफुल स्क्रीन को भी म्यूट करके देखा करती थी, क्योंकि ऑनेस्टली ये आवाज बड़ी बुरी लगती थी। इट यूज टू फील लाइक अ पनिशमेंट। लेकिन जो कलर बार स्क्रीन पर आते थे ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। लाइक आई कैन सजेस्ट कि अगर आप कोई 90s थीम की पार्टी रखो ना, तो उसके इनवाइट के कवर पेज पर यू कैन एक्चुअली यूज दीज कलर बार्स। दे लुक सो इंटरेस्टिंग। इफ यू कैन रिमेम्बर, क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन से कलर्स थे स्क्रीन के कलर बार्स में? आई नो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है। एंड हु नोज, समवन हैज द आंसर टू इट। तो डीएम करो ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर बचपन की मम्मी वाली कॉफी।
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करके आज भी ना होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो दौर ही कुछ और था यार, जब कॉफी का असली टेस्ट नहीं बल्कि माँ के हाथों का प्यार मायने रखता था। तुम असल में कॉफी थी भी कहाँ, बस गरम दूध में चुटकी भर कॉफी पाउडर घुलाकर मम्मा मेरे छोटे से कप में डाल देती थी और मैं खुद को बड़ा समझकर घूट घूट पीती रहती थी। तुम्हारा हल्का सा झाग, वो मीठी सी खुशबू और कप को दोनों हाथों से पकड़कर सुड़कने का अपना ही मजा हुआ करता था। मम्मा पूछती थी, बड़ी वाली कॉफी चाहिए या छोटी वाली, और मैं हमेशा बड़े होने की जल्दी में बड़ी। लेकिन मम्मा हंसकर वही पुरानी जानी पहचानी हल्की सी कॉफी थमा देती थी। तब समझ ही नहीं आया, लेकिन अब एहसास होता है कि तुम सिर्फ एक पीने की चीज नहीं थी, तुम तो माँ के दुलार का हिस्सा थी। अब जब असली कड़वी कॉफी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई है ना, तो तुम्हारी मिठास और भी याद आती है। काश एक मौका मिल जाए बचपन में जाने का, तो एक बार फिर वही प्याली पीऊंगी जिसमें कॉफी कम और बचपन ज्यादा घुला होता था। आज दूध के बिना कॉफी पीने वाली, लेकिन तुम्हें दिल से याद करती हुई तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना, ये जो गा रहा है ना, इसे हम फैमिली पिकनिक्स पे अक्सर गाया करते थे और बड़ों का ये फेवरेट गाना हुआ करता था।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: अलका याग्निक जी और कुमार सानू की आवाज में दिस ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड एनर्जेटिक ट्रैक फ्रॉम द फिल्म हम है राही प्यार के।

ये गाना नहीं है भाई, ये पूरा जीवन का फसाना है कि यार अगर साथ रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। एंड दैट इज सो ट्रू यार। क्या देखो, चीजें, रिलेशनशिप, पैसा, नौकरियां, ये सब तो आती जाती रहती हैं यार, लेकिन जब तक हमारे पास हमारी फैमिली की, हमारे अपनों की बैकिंग होती है ना, तब तक हमें ज्यादा चीजें हिला नहीं पाती हैं। क्योंकि एक बार मम्मी या पापा आके कंधे पर हाथ रख के कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, हम दुआ करेंगे, और बस सब तभी ठीक हो जाता है कि नहीं। और ये जो लाइन है ना कि पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ओए होए होए, इसे तो जीवन का मंत्रा बना लेना चाहिए, नहीं क्या। चलो जी, अब इस गाने को आपकी 90s की प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ पंजरों का

लाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े।

दिन भी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

0: रोक के भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा।
1: बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे, इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा, जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई, तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है, तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: कोई मॉडल पूरा ना लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती।
2: आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जींस पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस आओ।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें, बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुन करके वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो जिंदगी में दूसरों के ड्रामा को अवॉइड करना है ना, तो भर भर के पानी पियो।
2: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। यार देखो, अगर आप दिन में 2-4 लीटर पानी पियोगे तो इन रिटर्न आपको हर कुछ देर पे वॉशरूम जाना होगा, और आप जब हर कुछ देर पे वॉशरूम जाओगे तो आपके एब्सेंस में जो लोग कुछ कुछ चीजें कर रहे होते हैं, कुछ ड्रामा, कुछ भसड़, तो ये सारी चीजों को आप ऑटोमेटिकली अवॉइड कर दोगे, राइट? सो इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अपने बॉडी के हाइड्रेशन के लिए ना सही, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ के लिए आपको दिन में 2-4 लीटर पानी पीना ही पीना है। वैसे जिस हिसाब की गर्मी चल रही है भारत में फिलहाल, ये नहीं करोगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे ना यार। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन द शो। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi.

0: रेडियो मिर्ची,
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: माय डियर बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट ग्रैंडियर। बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े कैरेक्टर्स और बड़े बड़े डायलॉग्स, बड़े बड़े सेट, सब कुछ बड़ा बड़ा बड़ा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जब एक छोटा सा कैरेक्टर एक छोटे से टाइम पे स्क्रीन पे आके बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाए तो आप सारे ग्रैंडियर को भूल जाते हैं। बस कुछ वैसे ही कैरेक्टर्स की आज हो रही है बात थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म मसान से पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के बारे में। नंबर दो पे हमने बात की लक बाई चांस से शाहरुख खान के कैमियो के बारे में। नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड तमाशा से पीयूष मिश्रा के स्टोरी टेलिंग के बारे में। चलो अब नंबर चार पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से अमिताभ बच्चन के कैमियो के बारे में। सो वो मोमेंट याद है जब शशि प्लेड बाई श्रीदेवी मैम यूएस के लिए फ्लाइट लेती हैं। Meanwhile, बहुत सारी चीजें उनके साथ ऑलरेडी हो जाती हैं, जैसे उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो उनका काफी ज्यादा मजाक भी बन जाता है। एंड व्हेन शी फाइनली एंटर्स द फ्लाइट वो काफी ज्यादा इंटिमिडेटेड होती है विद इंग्लिश फिल्म्स, और उसी वक्त अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की एंट्री होती है एंड जिस तरीके से वो इस फीलिंग से उनको ओवरकम कराते हैं बाय ट्रांसलेटिंग द एंटायर मूवी सो फनीली इनटू हिंदी वाज जस्ट लाइक अ वार्म हग। कभी कभी आपके लाइफ में भी एक ऐसा इंसान होता है ना जो आपकी ऐसी फीलिंग्स को ऐसे चुटकी बजाते गायब कर देता है। बस कुछ वैसे ही कैरेक्टर्स की आज बात हो रही है यार। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे बात करते हैं वन ऑफ माय सुपर डुपर फेवरेट्स कैमियो ऑफ जॉनी लिवर इन द मूवी चलते चलते। मतलब फिल्म में हम जब पहले जॉनी लिवर को नोटिस करते हैं तो वो एक पियक्कर टाइप्स नजर आते हैं जो राज यानी शाहरुख खान के घर के बाहर मंडराते रहता है। इनफैक्ट वो शाहरुख खान से बार बार बोलते हैं कि हाँ ठीक है आ मेरे पास बैठ, बिकॉज इट गेट्स लोनली फॉर हिम। लेकिन शुरुआत में तो हम ऐसा नहीं देखते, लेकिन जब राज का लो हिट होता इन द लाइफ एंड व्हेन ही सिट्स विद नंदू जो जॉनी लिवर का कैरेक्टर है, उसको कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं व्हिच रेजोनेट्स विद थिंग्स दैट ही इज डीलिंग विद हिज ओन रिलेशनशिप। यहीं पे तो कमाल हो जाता है और फिल्म एकदम से पलट जाती है। सो माय डियर बाबू मोशाय, हमारी ये जो जिंदगी है ना वो भी हमारी अपनी पर्सनल फिल्म है, तो ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ से मिस आउट मत होने देना। बाकी अभी के लिए अच्छे वाले गाने एंजॉय कर लो यार। राइट हियर ऑन मिर्ची यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: Energy. It's hot.
1: Hey, Kanhaiya Lal ki.